काल प्रतिष्ठा की कर दे तो सोना नाथ अनाथ न मोसक तो सोना दानी न मोसक तेरे वर्गा नाथ नहीं ते मेरे वर्गा कोई अनाथ नहीं तेरे वर्गा कोई दानी नहीं ते मेरे वर्गा कोई भिखारी नहीं एक एक पंक्ति बड़े प्यार नाल सारे मिलके आके शोर

प्राप्ति रहे वेदा में नाम उत्तम सो थोने नहीं फिरे जू बता दे चार वो पुकारे ना तू माने खटवी एक बात बखानी जिस वक्त को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया बहु शास्त्र वो शिविर थी देखे सर्व कंढोल बुद्धि सुनाई हर हरे नानक नाम श्री गुरु नानक देव महाराज सब अवतारा का रिखिया मुनिया का संतान का भगतान का सिद्धांत संगतान कलयुगी जीवियां सुनाते हैं तो थोड़े वास्ते जेरा कंपलसरी सब्जेक्ट है मुख प्रयोजन है वो हैगा परमेश्वर का नाम। परमेश्वर का नाम जप के फिर क्या होगा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होकर क्या होएगा जन्म मरण कटिया जाएगा केवल मोक्ष की प्राप्ति तुम हो जाएगी। इस प्रकार से श्री गुरु नानक देव महाराज जी की 69 साल 10 महीने 10 दिन उम्र हुई है उन्हीं सत्तां दीपां नवां खंडां 14 लोकां में जाके गंधर्व देव गंधर्व पितृलोक कर्मलोक अजान लोक इंद्रलोक भीषण लोक ब्रह्मपुरी शिवपुरी सबना लोगों के बीच में जाके उपदेश दिता जिस वक्त को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। ओ परमेश्वर का नाम है ओ अंतर्जामी परमात्मा का नाम सार वस्तु जैसे बदाम रोगन बदामा का सार हुंदी है ऐसे परमात्मा का नाम सब का सार वस्तु है। राम नाम युद्ध महंगी हो जाके समझी कोई जय समर्त संकट में कोई दस्तवार हो राम नाम दे बरोबर संसार के बीच में कोई वस्तु नहीं है। जैसे अच्छा तीर से परसिखी है जो विचार चरे कल लाशरी हो जैसे कोट बस्तर उर्दमुखी बसंतर में तन दाहिरी हो जैसे लाख वेद कुरुक्षेत्र में समेर जग हो भंगठी हो पुनि अमृत नाम बस ये खीती जनिक वेड़ी से भाई। ए उपदेश श्री गुरु नानक देव महाराज ने कलयुग जीवन देता है और नाल यह भी दस्या है जो चार वेद परमेश्वर ने बनाए है वो अपौरुषवाणी है एक पौरुषवाणी होंगी एक अपौरुषवाणी होंगी जी जीव रचित वाणी होंगी अपौरुष होंगी उसके बीच में शंके उत्तर लोभ तमा पक्षपात हो सकता है। जो परमात्मा ने वाणी बनाई हो उसके बीच में पक्षपात कोई नहीं होंगे जेरा उदे ते निशा ना करेगा उदे वास्ते नरक है। जो ऋग्वेद यजुर्वेद शाम वेद अथर्वेद अंतर्यामी परमात्मा ने बनाए है अपौरुषवाणी है इसका जो सिद्धांत है वह गुरु साहब कहते यो ही है परमेश्वर का नाम लेना। चौहान वेदा के बीच में 100,000 श्लोक है कोई कर्म कांड न कथन करता कोई उपासना कांड न श्लोक कथन करता कोई ज्ञान कांड न कथन करता सब परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं परमात्मा के पास होने बाद फिर ऋषिया मुनिया ने चार उपवेद बनाए गांधर धनर अर्थ उपवेद उन्होंने भी एह सिद्धांत गुरु नानक ने दसिया केवल परमात्मा उन्होंने जरा ध्येय है गे है लक्ष्य है परम प्रयोजन है वो परमात्मा सबना नदियों का सिद्धांत की है लक्ष्य की है रात दिन कितने तुरियां रहनिया इन्हों का लक्ष्य समुद्र न प्राप्त करना है। इसी प्रकार से सबना जीवन का जरा ध्येय है लक्ष्य है यह मनुखा देह के बीच में परमेश्वर की प्राप्ति करनी है परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन ज्ञान जगत समूल अनर्थपुन वचन की हथियार कृष्ण भगवान गीता के बीच में अर्जुन उपदेश करते हैं वही उपदेश नामदेव जी ने अपने शब्द के बीच में दसिया केसव विचौनी अये मैं ये ज्ञान योग कृष्ण भगवान जी अर्जुन कहते हैं अर्जुन तेरा संबंधी संसार के बीच में कौन आएगा मेरे बिना तेरा संबंधी होर कौन आएगा यह जेरा तू संसार देखदा यह मेरा ही रूप है ये जो परपंच है यह मेरा ही रूप है मैनू ही अपना संबंधी समझो मैं तेरी कल्याण करांगा तेरा जन्म मरण कटांगा। इसी प्रकार से गीता के बीच में 8 श्लोक है वो किसनु कथन करदा परमेश्वर को परमात्मा को कथन करता है। श्रीमद भागवत के बीच में वेद व्यास ने 18,000 श्लोक लिखिया कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड सब जीवन परमात्मा के पास ले जा रहे हैं परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं। रामायण के बीच में 1 करोड़ श्लोक है वाल्मीकि ने

ਆਇਆ ਸਤਯੁਗ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਤੀ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਠਾਂ ਗੁਰੂਆਂ 43 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਗੁਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਬੀਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਸ਼ੋ ਪਿਸਤਾਏਗੋ ਰਾਮ ਜਾਏਗੇ ਛੂਟ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਸਕ ਜਾਏਗੋ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਦਾਸ। ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਤੁਕ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੀ ਮੈਂ ਜਾ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਨੇ ਆਰ ਜਾ ਉਰਦ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਖੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਾ ਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਤ ਨ ਪੁੱਛੇ ਕੇ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜੀ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਨ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇ ਚੰਦਰ ਸੁੰਗਲ ਲੈ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚੇ ਸੁਖ ਮਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਸੂਰੇ, ਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਦਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਤੋਤਨ ਤਿਆਗ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਦ ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤਿਰਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਲਿੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸਖਾਏ ਬੇਗਨ ਕਾਰੋ ਆਏ ਸਦਾ ਹੈ, ਪੌਨ ਭੰਡਾਰ ਧਰੇ ਗਰ ਜੇ ਤਕ ਸਾਗਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬਗਾਨ ਕਹੇ ਹੈ, ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਚੇਤ ਮਹਾਂਪਸੂ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰੀ ਅਕੇਲੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਹੂ ਜੇਸ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੂ ਮਹੇਸ਼ ਕੋ ਇਸ ਬਿਤਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨਾਇਕ ਜਾਏ ਭਜੇ ਅਗਿਓ ਕਟੇ ਹੈ, 12,000 ਵਿਚਾਰ ਅਰੇ ਜਦ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਹੀ ਤਾਂ ਜੈ, ਤਾਹੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਨੁਏ ਜੋ ਥਾ ਅਬ ਹੈ ਅਗ ਆ ਗਿਓ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪਰਸ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨੰਦ ਸ਼ੁੱਧ, ਉਸ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਪਤਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕ ਆ। ਏਕੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਏਕੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਏਕੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਏਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਏਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਿਲਦਾ। ਜੈਸੇ ਵੇਖੋ ਏਕਾ, ਦੋ ਏਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਏਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰ ਏਕੇ ਬਣਾਓ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, 20 ਏਕੇ 20, 100 ਏਕਾ 100 ਹੋ ਗਿਆ, 2000 ਏਕਾ 2000 ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਏਕੇ ਉਨੇ ਉਨੇ ਗਾਹ ਹਿੰਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, 50 ਹਿੰਸੇ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਹਿੰਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗੇ? ਏਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੈਗਾ? ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਸੇ ਏਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕਾ ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਜਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਭੂਸ਼ਣ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਘੱਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਘੱਟ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ, ਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਕਾ ਕੋਟ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਿਆਰੇ ਨਾਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗ ਮੈਂ ਮਿਲਾਏਗੇ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਧੂਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਧੂਰ ਪੂਰਤ ਹੈ, ਧੂਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂਕਾ ਸਭ ਧੂਰ ਹੀ ਸਮਾਏਗੇ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਨਦ ਤੇ ਤਰੰਗ ਕੋਟ ਉਪਜਤ ਹੈ, ਪਾਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਭ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੈਸੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅਭੂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤਾਹੀ ਤੇ ਉਪਜ ਸਭ ਤਾਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਏਗੇ। ਦਸਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਉਸ ਏਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਏਕਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਕਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ। ਕਿਉਂ? ਗੋਰਖ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਕੌਣ ਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨਰ ਬਰਨ ਜਾਦਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕਹਿਣਾ ਸਖਤ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ
बनो चेनो बारा नानी का पास अधिक से सहारा ये अखर अखर जाएंगे वो अखर में नहीं। ऐसा जो अद्वैत परमात्मा है जिसके बीच में सुजाति विजाति सुगत पेर नहीं है, जिसके बीच में देश काल वस्तु परिशेर नहीं है, जेरा नाम रूप से रहता है, जेरा थापियो न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए, ऐसा जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति इस जीव नू करोने वास्ते साडा अवतार हैगा। असि उस परमेश्वर का उपदेश करते हैं, होर किसी वस्तु का असि संसार के बीच में उपदेश नहीं करते हैं। जेरा निरपौ ते निर्वैर है, निरपौ ते निर्वैर ये दो विशेषण वे कटते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है, जेरा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। इसका असली स्वरूप ही समझ लेना इसे वक्रे नहीं आ गया। इस करके जाप करने से तू तू करता तू हुआ मुझे मैं रहा न हूं जब आपका पर का मिट गया जब देखा था। तो जिन्हें अवतार ऋषि मुनि है दसे गुरु है दरबार साहब की वाणी है वेद है ग्रंथ है विशेषादिक ऋषि मुनि है कबीर नाम दे भगत है ये सारे परमात्मा के प्रसंग आते हैं परमेश्वर न कथन करते हैं भाई तुसी उस परमेश्वर की प्राप्ति करो। ये जीव अपनी उत्पत्ति से पहले उस परमेश्वर का रूप था, जिस वे कोई चीज न से पैदा हुई न आकाश न पवन न अगन न जल न पृथ्वी कुछ भी ना उसका रूप था। माया ने अविद्या ने झूठी हंगता हंगता ने काम ने क्रोध ने लोभ अहंकार ने उस परमेश्वर से इस उस परमेश्वर से इन जुदा करके इस संसार रूपी जंगल विच ले आके ते गृहस्थ रूपी खूह विच सुट दिता है। हुण यह दुखी हुंदा कलेशा नूं प्राप्त हुंदा है। हुण महाराज ते कहिंदे नैन ना देखे साल से नैन बिहालिया करण न सुन ही नाद करण मुंद कलिया रसना जप न नाव तिलो तिल कर कटिए हरा जब बिस्वे गोविंद राय जनम कटिए। ये सानू उपदेश देंदे आ जिन काल मानस जन्म निर्मोल पायो सफल जन्म गुरु चरण शरण कै लोचन अमोल गुरु दर्श्य अमोल देखे सरबन अमोल गुरु बचन धरन कै नासका अमोल तिर नार बिंद वासना कै रसना अमोल गुरु मंत्र सिमरन कै हस्त अमोल गुरु देव सेव सफल कै चरण अमोल प्रदक्षिणा करन कै। ताही शरीर प्रवान होवेगा जे परमेश्वर दे पासे लगेगा, ताही ये शुद्ध होगा ताही निर्मल होगा। परमेश्वर के नाम के बरोबर संसार के बीच में कोई वस्तु नहीं हैगी है। एक शाबे के बीच में कृष्ण नाम लिख के पा दिया, दूसरे शाबे के बीच में नारद मुनि ने कुल दुनिया का सोना लाल मोती हीरे पा दिए वो नाम का पास पा ही रहा। तन तन राजा जनक है जिन सिमरन की योग एक करी के सिमरन पापी तरह ने। इसे करके नामदेव जी कहते हैं पावों फेरी हाथों ताल नामा गावे गुण गोपाल गंग जमन जो उल्टी रहे तो नामा कहता रहे गंगा जमना उल्टी नहीं बग सकते नामुमकिन है बग जाए तो बग जा जेरी गल हो नहीं सकती हो जाए। नामदेव जी मनुखा दे के बीच में ऐसे परमेश्वर नू ऐसे परमात्मा नू नहीं छड सकते। बसदा बस की नहीं सब राजे बेनती करे पटरानी पूत प्रहलाद किहो नहीं माने तिंतो रखा नहीं। प्रहलाद कहना मैं भी आखिर नहीं लगता अपनी माता के आदर नू कहना मैं परमेश्वर नू मनुखा दे के बीच में नहीं छकता। समन मूसन अपने पिता नू आंदा कब दब जाओ जारी विशद प्रेम बिहार मूसन तब ही मूसिए विशद पुरख दिया। हे पिताजी मैं व्याकल नहीं हुंदा दुनिया की चीजां जे मैनू परमात्मा भुल जावे मैं उस वेले व्यापक व्याकल हो जाना। कहां पयो ये तन पय शनशन प्रेम जाए तो डर पै तेरे जन। ये रविदास भगत कहिंदा मैं जे मेरा प्रेम जावे कमती होवे महाराज ता मैं गलरा है। ऐसा जो परमात्मा हैगा ऐसा जो सचिदानंद स्वरूप परमात्मा हैगा उन्हों सारे ऋखी मुनि अवतार सब वेद ग्रंथ जिन्हें भी सज्जे द्वाप तेरे ते कलजू के बीच में हो सारे उसनु कथन करते हैं कि उसकी प्राप्ति करो। तुसी अपनी उत्पत्ति से पहला उसका रूप थे ये हंगता ममता झूठी माया ने थोन जुदा करके ये जीव बनाता ते हुण तुसी उहदे नाल मिलो। देखो शब्द भी आउंदा माया ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई न किसी केरा जैसे तरबर पंख बथेरा चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मलाया शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहां ते आया खेचर पूछे तुलसी माला गुरु प्रसादी पाया नाम परन में परम तत् है सतगुरु हो लिखाया। इसका मतलब की है तू पहले ब्रह्म था। गुरु नानक साहब भी कहते ना तो स्वर्ग मस प्याला दो सुख पिस नहीं कह काला जन्म मरण नहीं नरक सुख ना को आए न जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई अवर नदी से कोई सुख।
उल्ट पवन मन मीनसी चपल गत, दसवें द्वार पर आगमन वास है, ताही ना पाक पवन जल पृथ्वी आकाश नाये, सर सूर उत्पत न विनाश है, ना ही प्रकृत वृत पिंड प्राण ज्ञान, शब्द सुरत ना ही दृष्ट न प्रगास है, स्वामी न सेवक उन्मान अनद परे, निरलम निर्मन विषम विश्वास है। देखो ये भाई गुरदास जी ने लिख दिता। इस करके इन्हों का तात्पर्य है कि जीव अपनी उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का स्वरूप था, इनू माया ने विद्या ने पुत्रा ने स्त्री ने धन ने दौलत ने झूठे मोह ने ये शरीर के इतिहास ने फिक्रा ने चिंता ने इन जुदा कर दिता उस परमेश्वर से। हुण ये जीव उस परमेश्वर नाल किदा मिल सकता है? हुण सानू सोच तो यह करनी चाहिए है, फिक्र तो यह करना चाहिए कि जुदा तो असि हो गए हैं, हुण असि परमेश्वर नाल किदा मिलिए। कोई जन हर स्यों देवे जो मेरी लागी प्रीत सुजान स्यों, मैनू बरजे लोग है जा कोई हैरे संत जो तोरो देखूंगा, कोई संसार के बीच में संत महात्मा लिखी मुनि होवे जो मैनू मेरे पिता ते मैं जुदा होया मैनू अपने पिता नाल मिला देवे। हुण ये ढंग तरीका असि की करिए संसार के बीच में आके भी किदा उस परमेश्वर नाल मिलगी? कोई किसी संतान महात्मा पर शंका करदा, हाँ नाथ मैं दुखी दरियो देख संसार, बुढ़त हो पव सिंध में मोहे करो प्रभ पाल, महाराज मैनू इस संसार विचो पार करो, मेरा जन्म मरण कटो। वो संत महात्मा की उपदेश करते हैं फिर किदा ही जीव जीवित भाव का नाश करे, अज्ञान का अविद्या का नाश करे, सेंसे ग्रंथि का हृदय ग्रंथि का जन्म मरण का कर्म का कामना का देह दया का मोह का किदा ही नाश करके उस परमेश्वर नाल मिले। हुण ये हरेक दे जुग्यासु दे मन के विच में शंका पैदा हुंदी है। इहदी निवृत्ति करने वास्ते गुरु नानक देव महाराज कहिंदे आ, ये संसार की निवृत्ति करने वास्ते और परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते तुसी ध्रुव मंगल करो। जिदा ध्रुवना कीता कीती है पंजा कालां दा ध्रुव, विघन पाने वाला सारे देवते इंद्र दे सने सब विघन पाउंदे से, ओदे मां पे भी आके विघन पाउंदे से, ध्रुव अपने निश्चय के विच में अटल रहा, कामयाब होया कि नहीं होया। दूसरा दृष्टांत सज्जू के बीच में प्रहलाद भगत, वो भी सत्तां अठां सालां दा सा, उहदे भी माता पिता दुश्मन, हरण कश्यप ना के सारे दुश्मन अग्गा ना लाउंदे है, समुंदरां च पाउंदे सुटदे है, ते उपर हजार हजार मन दे पर्वत उत्ते डिगदे है, वो राम राम राम राम राम। देखो कामयाब हो गया, जिदा कामयाब हो गया जिदा वह परमेश्वर नाल मिले। वेखो सनक सनन सनातन ब्रह्मा के पुत्र होया, अपने पिता नु कहंदे मेरा तू कोई पिता नहीं, सानू ज्ञान करता पिता। फिर वह ब्रह्मा ने जाके विष्णु भगवान नु आख्या, विष्णु नु हंसा अवतार धारना पिया, उन्होंने जाके ज्ञान करना पिया, सनक सनन सनातन वेखो कामयाब हो गया। वेखो तेरे ते युग के विचों पिलरी ने किनिया तकलीफा पाईया है, पिलरी ने बहुत ही तकलीफा सही है, रिखी भी मुखालफत, माता भी पिता भी पति भी सब मुखालफत उस वेले से सब दुख तकलीफ लेंगे थे। वो राम राम जपदी सी, श्री रामचंद्र ने उन्हें नौदा प्रकार की भगती सुना के ते ज्ञान दे के विकू के समय झूठे वेल खाते है, ते चरण तूर मथे में ला के उन्हें आत्मज्ञान कर दिता। देखो हनुमान जी हो, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी ने एक माला दिती सी, वो सी रावण के तोशे खाने में जमा, रावण नु ब्रह्मा पासों मिली सी, ब्रह्मा नु विष्णु पासों मिली सी, वह फिर विष्णु ने मन भी सोचा कि श्री रामचंद्र नु दे दईए, वो श्री रामचंद्र जी ने माला हनुमान नु देती, हनुमान माला ही भन्नी जा। विष्णु ने आख्या भन्दे क्यों है, आखिर जिसके विच में परमेश्वर का नाम है नहीं वो चीज मेरे किसे काम दी नहीं, तेरे शरीर च केड़ा नाम है, सारे शरीर के विच में राम राम राम राम राम। मनसूर दी सुभा विचों भी एन लाख गुरु रामदास गुरु अमरदास महाराज नु कहंदे है, हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई, कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरुदेव मुख राम नाम प्रगास। फिर भी परमेश्वर दा नाम मंगदे है, जिदा ओ मुक्त हो गए भाई, मुक्त मिछ सी चेतात विशियन विश्व त्याई, शुमार जब दया तो सतू की बदसा। ये तेन मुक्ति दी इच्छा जिदा उन्होंने की है, इदा ही तू संसार के बीच में अपने घर देखो उन्हों का कितना परमात्मा के बीच में प्रेम था, अर्जुन का कृष्ण भगवान के बीच में कितना प्रेम था। जिस वे कौरव पांडव का जंग शुरू होया तो उस वे दुर्योधन मदद लेने वास्ते जाए, पर श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं, नीचा महाराज दिन बाणियां रोज सुनते पर श्रद्धा नहीं,
विश्वास नहीं आएगा, इधर ध्यान ही नहीं आएगा, पुत्रां तियां इस्त्रियां ते नेश आएगा, कितों कावांगे पीकर महाराज ते नेश नहीं। वो कहने काहे रे मन चित में उदम जा आहराज जो पढ़िया पहल पतन में जंतो पाए तांकर जी के आगे कर तरिया मेरे माधव जी सर संत मिले सो तरिया। तो इस करके दुर्योधन की श्रद्धा नहीं, वो जाके नमस्कार नहीं कृष्ण भगवान में करता, तो वो सराने वाला कुर्सी लह के सरे जुत्ती बैठ जाता है। पूरे मगरों फिर की होया युधिष्ठिर ने अर्जुन आके अर्जुन परमात्मा का पता नहीं लगता, कदे देवतियां दे पासे हो जाता कदे राक्षसों दे पासे हो जाता, तो तू भी जा। अर्जुन श्रद्धालु सेगा, वो स्नान किया वस्त्र धोते प्रसाद लिया, वो जिस वे अर्जुन गया तो उसने जाके चरणा के बीच में दंडवत प्रणाम किया, प्रदक्षिणा लिया, चरणा का ध्यान करके बैठ गया। तो कृष्ण भगवान को जानी से त्रैकाल दर्शी से उन्हें वेखिया एक पासे दुर्योधन बैठा एक पासे अर्जुन बैठा। पहले अर्जुन की तरह वेखिया, अर्जुन ने कहा तू की चाहना जी, मेरा जंग हो रहा मेरी मदद करो। दुर्योधन कहता जी मैं पहला ना आया, मैं तो पहला ना आया, मेरी सुनो दुर्योधन क्या बात, मेरी मदद करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हे दुर्योधन साडा एक संकेत है, धर्म है, बिरद है, साजी शरण के बीच में कोई आवे असि उसकी मदद कर दे, असी तेरी भी मदद करनी है, असी अर्जुन की भी मदद करनी है, दोहां की मदद किदा करूंगे, दोहां की मदद इदा करांगे, एक पासे मैं अकेला होवेगा और शास्त्र नहीं पकड़ांगा जंग के बीच में, एक पासे मेरी सारी फौज सारे शास्त्र अस्त्र खजाने होंगे, तू पहला आया तू जी मर्जी चीज मंग ला। शरद सऊरी श्रद्धा है ना, इस करके दुर्योधन कह लगा महाराज जे तुसी जंग भी नहीं करनी ते युद्ध के बीच में शास्त्र भी नहीं फसरना ता असी तुहानू उत्थे की करना हैगा, थोड़े कोई असी नाच नहीं चाहने है, रसा पौनिया है, बाकी सारी फौज दे दियो। कृष्ण भगवान ने कागज लिया ते उपर दस्तखत कर दिते, हे दुर्योधन मेरे बिना सारिया फौजा का तू मालिक। खुशी होके चला गया। पिछो अर्जुन नू कहन लगे अर्जुन जी तू पहला आ तू ना ले लेने। अर्जुन कहंदा हे महाराज इस संसार के बीच में मेरे को किसी देवी देवते दी रिद्धियां सिद्धियां दी खजानियां दी शास्त्रां अस्त्रां दी किसी मुक्ति दी किसी वस्तु दी भी इच्छा नहीं हैगी है, ना मैं आप नू चाहना कि तुझ शास्त्र पकड़ो, ना ये चाहना कि मैनू सलाह दियो, बस मैं एक वस्तु चाहना हैगा जिस वेले मेरी पार्टी इधर खलोवे ते मेरे मुखालफ दुश्मन खलोन तो सारे नू पता लगे कि कृष्ण भगवान मेरे पक्ष के बीच में खलोता है, बस मैं इन्हें चाहना है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन तेरी श्रद्धा है तेरा विश्वास है यह इस मैदान के बीच में तेरी फतेह होगी और मैं तेरा रथ फटकाऊंगा। देखो प्रेम सच कहो सुन ले सभी जन, प्रेम की इतनी प्रभाव पायो गोविंद पाओ भगत भुगा बेबी नानकी किदा गुरु नानक देव ने खिंच लेंदी सी, वो सिर्फ एक सवैया हैगा सूरज प्रकाश के विच भाई संतोष ने लिखा हे जगबंध प्रभु सो कंग मुकंद आनंद को दर्शन दानी श्री करतार दतार मुरार अवतार लियो सोई मैं मन मानी जे शरदा मम साच हृदय मैं तो प्रगटो पर भात महानी शोक हरो निलोकन को शोक अतमत मूर्गवानी। की प्रेम सा बेबी नानकी मर जाती सी प्रेम के बीच में, प्रेम महाराज फिर खिंचे हुए आ जाते से, फिर भाई मांझ का प्रेम देखो भाई मांझ का किन्ना प्रेम था पंजवें पिता के चरणों के बीच में, कन्या भी गहने पाई स्त्री भी गहने पाई, फिर लंगर दी जाके सेवा लगा कर महाराज ने लंगरों रोटी खाना भी हटाता, फिर दसा नह की बात किरत करके लिया वो रोटी खादा फिर लंगर दी सेवा करता है, फिर महाराज उन्हें बुलाते नहीं है, फिर एक दिन वो लकड़ियां लैन वास्ते जाता सतगुरां दे लंगर वास्ते ते लकड़ियां लेके आंदा, रास्ते के बीच में शाम पै गई है ते उदी अखां मोहरे उदी दस्तार आ गई है ते नेरी पिछा नहीं जांदी है, मोहरे खूह दी मन है नी विच गिर पिया लकड़ियां ते जन्ने दंदा, सारी रात खलो के महाराज दे गीत गाउंदा रहा महाराज दा भजन करदा रहा। फिर सवेरे पंजवें पिता वेखो किदा अपने संगत विचों नंगी पैरी फिर लेने वास्ते नठे है, फिर साडा सिख खूह च डिग पिया, फिर जल्द खूह दे लागे गए तो पंजवें पिता ने भाई मांझ नूं आख्या भाई तू कौन आ खूह के बिच में, कहिंदा मैं गुरु करदा कुकरां दा कुकर हैगा दासां दा दास हैगा, भाई जे तू मेरा भला करना चाहना तो लकड़ां सतगुरां दे दरबार के बिच में लै जा। महाराज कहते तेन लकड़ा का बाद फिक्र अपने शरीर का कोई नहीं फिक्र, कहते अपने शरीर का मैं कोई नहीं फिक्र।
मिंटर लगकर आंदा फिर कराया मेरे प्रेम के बीच में फर्क न पाए जाए। जिस कारण प्रभु मेरा जुदा हुए अग लग भूक वैसे मूल ते ब्याज नू सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल उद्यम पला हर का नाम जो प्रिय सदा। फिर महाराज ने लकर कडिया मगर वो कडिया भाई मंज नू कडिया तो महाराज ने उन भर दे दिया। मंज प्यारा गुरु नू गुरु मंज प्यारा मंज जाग का बहुता गुरु लंघन यारा। ये हम परमेश्वर नाल मिलना हो जन्म भर कटना हो भाई जिदा भगत ने की कबीर नाम दे वाद करने की हैगी उदा करे बंदा उस पासे लगे। देखो कबीर नू अंतर जामी परमात्मा ने दर्शन दिते है। कबीर साहब नू कहा कबीरा जो मर्जी मंग ला शब्दों का कोट सूर जाके प्रगास कोट महादेवर को लास दुर्गा कोट जाके मरगन करे ब्रह्मा कोट भेद उचरे जो जाचो तो केवल नाम आम देव से नहीं काम। हे प्रभु हे अंतर्यामी हे प्रेरक तेरे दरवाजे के बीच पता नहीं किन्ने ब्रह्मा किन्ने विष्णु किन्ने शिवजी किन्ने इंद्र किन्ने चंद्रमा किन्ने सूरज किन्ने आकाश पाउन लगन जल पृथ्वी किनिया रिधियां किनिया सिद्धियां हैगियां इन्हां नाल मेरा कोई काम नहीं मैं तो अपना नाम ये मनुखा दे मिली है उन्हों पाने वास्ते मनुखा दे मिली है इते परे हो कोई काम नहीं। संसार की उस उत्पत्ति से पहले वो परमात्मा साथ था महापरलो ते बाद भी परमात्मा साथ होगा हम भी वो परमात्मा साथ है। ये संसार अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था महापरलो ते बीच में नहीं होगा हम भी नहीं है। जैसे राजा हैगा वो उन्हें सुपना आया राजे नु वो सुपन अवस्था के बीच में राजा भिखारी बन गया वो भिखारी तो है नहीं है तो राजा ही वो तो निंदा दोष करके है। वो पहला भी राजा मगरों भी राजा हूं भी राजा ही है भिखारी पुना पहला भी नहीं मगरों भी नहीं हूं भी नहीं ऐसा ही वो परमात्मा हैगा। इन देखो पंजवे पिता का शब्द आंदा हैगा तू फेर साख तेरी फूली तू सूखम होया स्थूली तू जलनद तू फेन बुद बदा तुद बन पालिए जियो तू सूत मनिये भी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मध अंत पदा सोई अवर न कोई दिखा लिए जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंगदाता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो तू ठाकुर सेवक प्रवापे तू गुप्त प्रगट प्रवापे नानक दास सदा गुण गावे एक भोरी नजर निहालिए जियो। उस परमात्मा नु कथन किया दरबार साहब के बीच में भी तीन तरह की वाणी एक कर्म कांड है एक उपासना कांड एक ज्ञान कांड है। कर्म कांड वो होंदा जिदों भाई गुरदास जी ने लिखा हूं तुस कोल कुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे हूं तुस कोल कुमाया पर नारी दे नेर न जावे हूं तुस कोल कुमाया पर ददबे नू हथ न लावे हूं तुस कोल कुमाया सतगुरु दा उपदेश कुमावे हूं तुस कोल कुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे गुरमुख सोई सहज समावे। ऐसा संसार के बीच में रहे ये कर्म कांड है। उपासना कांड का दरबार साहब के बीच में 4500 शब्द है। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर ताकि योग गि जेरे जन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जे रे मन की मती ती आगो हरिजन हुकुम भू सुख पाइये रे जो कुछ करे भले सोई पल मानो सुख दुख हो आइये रे कोट पत्र खन माहे उदारे करते बार न लागे रे दीन दरद दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे नवाजे रे सबको मात पिता पर पालक जी प्राण सुख सागे रे दिंदे टोट नहीं तिस करते पूरे दी होदत नागे रे जाचक जाचे ना प्रभ तेरा कट कट अंतर सोई रे नानक दास ताकी शरणाई ताते बिरथन कोई रे। इस करके महाराज ने तो फैसला कर दिता मुक्ति विखे भी राग जो बंधन विखे स्ने ए सब ग्रंथन को मतो मन माने सो करे। गुरु साहब कहते हैं जे तू मुक्त होना परमेश्वर बिना किसी नाल प्यार ना कर परमेश्वर बिना किसी नू अपना ना मन ते जे तू नरकां वे जाना जन्म मरण लेना तो दुनिया नाल प्यार पा ले। ये सारिया वेदां ग्रंथां का सिद्धांत हैगा। देखो मदा अपने बसंत लता हुई है बसंत लता नू सुमंद खां पठान ने आख्या सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज शरीर छड गए साहबजादे शरीर छड गए सिख सारे आनंदपुर साहब खत्म हो गए पता नहीं किथे गए मैं हूं तेरे नाल निकाह करना है तू मेरे नाल शादी कर ले। ते बसंत लता ने कहा मेरे नाल माता साहबदेवां दा तो दसवें महाराज का वायदा हैगा उन्हें मैनू पुत्री आख्या सी उन्हें आख्या सी पुत्री इस लोक विच भी तेरी सहायता करेंगे परलोक विच भी मेरी सहायता करेंगे मैनू नेशा मेरी सहायता करूंगे।
समुद्र का कहने लगे कितों तेरी सहायता गुरु गए, देख मेरे पर खंडा हैगा, हमें मैं तेरा सिर उतार देगा। किथे वो सहायता करने वाले तेरे हैगे, उन्हों का कोई नहीं पता किथे गया। सद उन्होंने पुकार उन्होंने, उस वेले बसंत लता ने हरनी मांगो, हाथी मांगो, सन्ने मांगो, ध्रुव मांगो, द्रौपदी मांगो, महाराज ने पुकारिया। ते महाराज तुसी आख्या सी तू साडी पुत्री है, इस लोक विच भी तेरे जाम होवांगे पर लोक विच भी तेरे जाम होवांगे, हुण तुसी किथे चले गए, मेरी आज आके सहायता करो। उस वेले बसंत लता ने वेख्या था गुरु साहब अपने घोड़े ते चढ़ के ते माता साहब देवा नाल अपने पंजा प्यारिया नाल साहब यादा नाल आ गए ते समुद्र खान गसी पै गई। उस वेले महाराज है कि उन्होंने सहायता करती पे बीबी दयाल कौर जलंधर के बीच में रहने वाली सी, ये अपने पिता नाथ जसरेश पिता दे पास श्री आनंदपुर साहब जंग के मौके दर्शन करने वास्ते जाती सी, रास्ते पठान बेईमान हो गया, उन्हें पिता का सिर कट दिता। उसने बहरा किया था कि तुसी फिक्र चिंता ना करो, मैं थोड़े ना धोखा नहीं करता, मैं थोड़ा जावन बनागा। जिस वेले पिता का बीबी दयाल कौर के पिता का सिर कट दिता तो उस वेले बीबी दयाल कौर ने वेख्या मेरे पिता ने मार दिया, जामन वेखे कदे किसे पासे वेखे, कदे किसे पासे वेखे, कदे किसे पासे वेखे। वो पठान कहंदे की वेखनी है, आखे जामन नू, जामन तेरा इत्थे किथे, ओह तां आनंदपुर साहब के विच 22 लख फौजां दे घेरे के विच मैं आया। वो कहंदी हाजरा हजूर है, उन्हां दा वेला पूरा जरूर आएंगे। वो कहंदे की जनानी ने गल्लां करने, हथ पर बन्नो ते खच्चर ते लद्दो, तुहानू भी ले जाओ, इन्हू भी ले जाओ। उस वेले की वेख्या बीबी दयाल कौर ने, महाराज आ गए, महाराज आ गया पंजा प्यारियां दे सर। उस वेले पठान नठे, महाराज ने उन्होंने पिछो नठ के उन्होंने सिर धरते वखरे किए, नाले तुसी सानू जामन बनाया भाई, नाले तुसी हुण बेईमानी कीती है, इहदे नाल धोखा कीता है, पंजे पठान मार दिते। फिर उस वेले जिहड़ा बीबी दयाल कौर दा पिता सा उहदे ते अपने महाराज ने कमंडल विच जल दा छिट्टा दिता, उह महाराज दा भजन करदा खलोता, कहिंदा पुत्री मैनू नींद वधी आ गई, ये सिर ये पठान किसने मारे है। बीबी दयाल को कहने लगी पिता जी ये पठान बेईमान हो गया से, ये सच्चे पिता ने आके मारे है गे, कोई फिक्र ना करना, देखो श्री आनंदपुर साहब पहुंच गए। इस करके जे कोई चाहता फिर मैं माया दी कैद चो निकल जावा, मैं जन्म मरण कट देवा, क्यों कल युग अखीर का युग है, सज द्वापर तेरे तभी चुके, कल युग अखीर का युग है, ये अखीर दी साडी जन्म है। जे असि ये अपने मन के विच मैं सोच सोचांगे फिर असि 20 साल 25 साल फिर जम के परमेश्वर न मिल जाएंगे, फिर नहीं मिलना, फिर बिल्कुल कोई परमेश्वर नहीं मिलेगा, फिर कोल कलयुग का समय आ जाएगा। जिसे 10वें महाराज ने कलयुग के लक्षण लिखे है, कोई संत महात्मा संसार के बीच में नहीं रहेगा, कोई राजा धर्मी नहीं रहेगा, अपने बगाने हो जाएंगे, गुरुद्वारे मंदिर के बीच में सब नास्तिक लोग हो जाएंगे, सारे पाप विवाद फैल जाएंगे। उस वेले परमेश्वर के पास का कौन उपदेश करेगा, सानू कौन सानू संसार विचों कढ़ेगा। तो इस करके महाराज कहंदे ये जिहड़ा तेरा मौका हैगा, इहदे विच कबीर साहब का भी शब्द हैगा, गज नव गादा सी किस पुरियां एक तनाई, 60 सूत नव खंड 72 पट लोग गाई, गई बनामन माओ कर छोड़िए जायज लाओ, गजी न मिलिए तो न तुलिए पांचन सिर टाई, जे कर पांचन बेग न पावो जगर करे कराई, जे कर पांचन बेग न पावो जे कर हूं तू शताबी, बहुत शताबी इस मनुखा दे के विच उस परमात्मा नु ना पावेगा, जे कर पांचन बेग न पावो जगर करे कराई, फिर 84 लख जीना च नेला बन के सप ना लड़ूंगा, इला बन के मुर्गी ना लड़ूंगा, आपस विच एक दिन जंग करूंगे, जगर दिन की बैठ, ये दिन भी तेरी समाप्ति हो जानी है, कोई चीज संसार के बीच में सदा नहीं रहने वाली, एक परमेश्वर ही सदा रहने वाला हैगा। इस करके जिस वेले दिन की समाप्ति हो जाएगी तो अंतरजामी परमात्मा तेरे ते कोप करूगा, मैं कोप करूंगा, जो वैदा करके आया परमात्मा के नाल वो पूरा नहीं इसने किया हैगा, आवे परमात्मा कोप करेगा। उस वेले अंतरजामी परमात्मा कोप करेगा, ए वेला कटे आए, ए वेला कटे आई का मतलब की है, ए मनुखा दे फिर नहीं मिलेगा, आ जेरा हुण सानू मानस दे मिली है, गुरु नानक दे वर्गे पीर है,
दरबार साहब की बाणी हैगी है, हरिमंदर साहब हैगी है, संत महात्मा हैगी, ये असि फिर दोबारा कहिए भी सानू ऐसा चांस मिल जावे। फिर कबीर साहब कहते ये वेला कट है, ये मनुखा दे दा ऐसा वेला फिर तुहानू नहीं मिलेगा, ऐसा चंगा मौका नहीं मिलेगा, एहो तेरी बढ़िया गोविंद मिलने की, ये तो परमात्मा दे मिलने का मौका हैगा। इस करके कबीर साहब कहते शोध पसारी यहां रो बपरी कहो कबीर समझाई, हे बुद्धि विचारी दुनिया के पसारे छड़ दे, अंगता ममता छड़ दे, इहां रो अपने परमेश्वर के बीच में रह, ते अपना जन्म सफल कर, ते संसार भगत ते पार हो जा। इस करके परमात्मा की प्राप्ति का तरीका इको एक हैगा, परमात्मा के नाल प्रेम करना। गुरु साहब ने फैसला कर दिता, सच कहो सुन ले सवे, जिन प्रेम तीर तिन ही प्रभ पायो, गोविंद पाओ भगत भुखा। परमात्मा राजा नु भी नहीं मिलता, गरीबा नु भी नहीं मिलता है, वह तो प्रेम वेखदा। शिवनाग राजे का प्रेम वेखिया, भाई लालो का प्रेम वेखिया, ते अपना बिदर दा ते बिदरानी दा प्रेम वेखिया, ते दुर्योधन वर्गों के प्रेम नहीं वेखे। राजा प्रेम करे तो उदे वस हो जाता, मोल ढज दे कृष्ण पुआन रस हो गया। इस करके अंतरजामी परमात्मा का कोई चीज नहीं वेखदा, वह तो प्रेम वेखदा। सच कहो सुन ले सवे, जिन प्रेम की उतनी पूरा पायो, गोविंद पाओ भगत दा भुखा। इस प्रकार से महाराज का उपदेश सुन के

तू उतना चिर ही सुखी बच सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदों ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

एक आया जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तेनु जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सहज फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदो कोई भी तेरी बात नहीं पूछेगा जो साहेब अपनी वाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

जितना चिर तू पेके घर विच भाव इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सौरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी। जो साहिब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

पंचम पातशाह अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं। ओ मनुख भागा वाला है जिसके मन विच तेरा प्यार जाग पिया, जिसके मन विच तेरे दर्शना की तांग पैदा हो गई, जेड़ा विराग विच तेरे दीदार करना चाहता है, जिसके मन विच विराग है उसनू ही प्रभु मिल पैंदा है। ओ प्रभु दे दीदार कर सकता है जिसके मन विच विराग है। रायपुर दे रहण वाले सोना अते मोहना जिन्हां नू भगती दा रंग चढ़िया, दिन रात ठाकरां दी पूजा करदे हन, निता पर ठाकरां नू इशनान करवा के धूप बत्ती करके कीर्तन विच जुड़ जांदे हन, मगन हो जांदे। एक दिन ठाकरां नू इशनान कराउण वास्ते जल लिया रहे हन, ता रस्ते विच एक गुरु दा प्यारा गुरसिख जो जख्मी हालत विच पिया है ते मुखों उचार रहा है कि कोई एक घुट पानी दा पिला जा, ता इन्हां ने सुनिया अते रुक गए। ता फिर की आख्या, असी ता ए पानी ठाकरां दे इशनान वास्ते ले जा रहे हां, ए पानी जूठा हो जावेगा ता फिर तुर पे। फिर गुरसिख ने आवाज दिती, भाई एक घुट पानी दा पिला जाओ। फिर दोनों जने रुके, वापस मुड़े कि इस नूं घुट पानी दा पिला दे। फिर आखदे हन कि जे इस नूं घुट पानी दा पिला दिता ए पानी जूठा हो जावेगा, इस जल दे नाल असी ठाकरां नूं इशनान कराउणा। फिर तुर पे ता गुरसिख ने आख्या, तुसी एक घुट पानी दा नहीं पिलाया, अच्छा जिस ठाकर वास्ते तुसी जल ले जा रहे हो ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। आज गुरसिख दे मुंह चो ए आवाज निकली, ए आवाज सोना ते मोहना दे कन्ना विच पई, ता ए आवाज गूंज उठी, ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। घर आए, ठाकर नू इशनान कराया, कीर्तन करन लगे, पर आज मन नहीं जुड़ रहे है। कन्ना विच ओ आवाज आ रही है, ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त मन ना जुड़िया, सोचिया कि उस गुरसिख नू घुट पानी पिला आई, हो सकता है साडा मन जुड़ जावे। ता उथे पहुंचे की तकिया, जो गुरसिख पानी मंग रहा सी अज शरीर छड़ गए, श्वास निकल गए हन, मन बहुत उचाट होए कि असी इस नु एक घुट पानी दा नहीं पिला सके, सचमुच एक बड़ा वड्डा पाप कर बैठे। ता पुछिया कि ए गुरसिख कौन है, पता लगा कि ए कलगीधर पातशाह दा अनन सिख है, प्यार वाला सिख है, जो संगत शहर कलगीधर पातशाह दे दर्शन करन जा रही सी, डाकुओं ने संगत ते हमला कर दिता, ता इस गुरसिख ने डाकुओं नाल मुकाबला कीता, ता डाकुओं ने इस नूं जख्मी कर दिता, जो कि पानी मंगदा मंगदा शरीर छड़ गए। ता इन्हां दोहां दे नेत्रां विचों अथरू वग तुरे कि असी इतने निभागे, इतने निकरमे कि असी इस नूं एक घुट पानी दा भी नहीं पिला सके। अज मन विराग विच आ गए, मन भर गए कि किसे तरीके सहिब कलगीधर पातशाह दे दीदार करिए ते अपनी भुल बख्शाई। ता अज दोनों दे मन भर गए, दर्शनां दी तांग पैदा हो गई, उस सज्जन नूं लभण तुर पे हन। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेअंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शां हासिल कीतियां तां इन्हां दोनों नूं पता लगा सोना ते मोहना कि साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे कि चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त साहिब वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतां दे रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

खाए छुट्टड़ होई। मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई। पीड़ लई रस गन्नेओं छिलछु है न कोई। रंग मजीठों निकले अड लहे न सोई। वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई। काया हंस विछुन्या जिसको न सथोई।

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़िया बने न विच समावे।

मुंह कालख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़ मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर सवें तिस नाल न फरिए

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

सिर छार उड़ावे। तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम भी होने सत्संग न पाए, मूर्ख सच न जाननी। निंदक

کیوں ہوئے سابونے دیمو کھکھر جو چھو ہے دسے موہ سونے

कर दे परवासा थल विच तपन पठिया क्यों लह प्यासा सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

खूनखार शराबी हाथियां नाल लड़न दी समर्था रखन लगे। ए शक्ति सारी खंडे बाटे दे अमृत दी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह

गिद्धड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक एक से

लड़न दी समर्था रखन लग पे। ए गुरु जी ने मौजजा दिखाया, करिश्मा दिखाया कि खंडे बाटे दी पहल दे के ऐसी रूह फूक दिती कि मौत दा कोई डर नहीं, किसे जरवाने दा कोई डर।

कर सकता है, माया दान कर सकता है, जमीन जायदाद राज भाग भी दान कर सकता है, पर सरबंस दान

सिर तां कटवा दिता, पर उसका हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पहुंच सकिया। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

वारी वंजा खनिए वंजा तौ साहिब के नामे ऐ परमेश्वर मैं तेरे तू वारी तेरे नाम तू कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं। आओ अपनिया बिरतियां उस पासे ले चलिए। गुरु नानक साहब दे पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नूं मिले नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए। बेबे नानकी जी पिता मेहता कालू नूं मिल के अपनी माता माता तृप्ता नूं गले लग के मिले तेनूं गल नाल लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नूं देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नूं कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी के पैरां ते मत्था टेकिया। मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज के दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओह रिश्तेदारी कट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानक जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर ओ जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपोए की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकते ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मार दे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हुए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई, सत करतार, इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए, गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया, जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए, कंड ते हाथ फेरे है, अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई, बड़ा समा हो गया तैनूं उड़ीकदे आ, तैनूं बड़ा मैं झिड़किया, तैनूं मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है, पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया, कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए, मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने, माता जी दी अखां बंद ने, हाथां विच चोला है। आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै, आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया, लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां, सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया, अथरू किधे रुकन। कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रख दी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई, संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए। ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन हे नहीं हो सकता। सात संगत, ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जिहड़ा चंगा पति ना बन सके है, चंगा पिता ना बन सके है, जिहड़ा चंगा पुत्र ना बन सके है, जिहड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके है, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान

दुनिया विच जा रहे हैं, बंदगी कर, सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना, सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया हैं, अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखने हैं। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मन विच प्यार रखिए, साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता। सत्संग एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है। इना गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले। साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलदा है और इस प्यार नूं ही जानदा है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जांके अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले तीर कि यह प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने उही जाने

کے سجے ہم ہیں، سیو کری انہی کی بھاوتن،

ثابت تم ہر

अपने दास को, अपने दास को प्यासा।

हे निरंकार, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारियां ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारियां ते मेर कर। जो ईर्खा, द्वेष, वैर, विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगां लगियां हुई ने, तू कृपा कर, तू मालक है सारियां ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबा, तू सारियां ते मेर कर। सारे तेरे ने, तू सारियां की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुछ उपाए, ये पदार्थ सारियां नू दे, सारियां की कृपा कर। दुख दालिद्र भन तर, सारियां दा दुख दूर कर। दलिद्र ये सब दूर कर, तू सारियां ते मेहर कर, मेहर कर, मेहर कर।

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहन चंदन सुगंध ग्रह सोहन चंदन सुगंध।

0: अति सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कहिया नानका जह प्रीत नाही भगवंत।
1: बेशक दुनिया के सुख प्राप्त होवन सारी सृष्टि का राज भी प्राप्त हो जावे बिना नाम तो मन शांत नहीं बिना नाम तो सुख नहीं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया। नाम दे विच ही सारे सुख हन नाम दे विच ही सारे पदार्थ हन। सुखी कौन है जो जप रहा श्री वाहे हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन के सुंदर सेज होवे अनेकां सुख किसे भी सुख की कमी ना होवे। महल माड़ियां भी सुंदर होन सुगंधियां भी कपड़ियां नू लगियां होन मन बांछित फल मानदा होवे मन इच्छे सुख मानदा किछ नाहे भी सूरे कोई फिक्र फाका ना होवे। पर हजूर कहंदन जे परमेश्वर दा नाम नहीं चेते ता ऐसे मनुख नू समझ लो जिस तरह विष्टा दा कीड़ा किसे कम नहीं आउंदा इसे तरह ही ओ मनुख है। सो प्रभ चित ना आवई जे नाम चेते नहीं है तो हजूर कहंदन सो प्रभ चित ना आवई विष्टा के कीड़े। कोई बेशक उच्ची कुल दा भी होवे सुंदर भी होवे चतुर भी होवे बड़िया ज्ञान दिया बातां भी करता होवे जे मन करके गुरु चरणा दी प्रीति नहीं तो हजूर कहंदे न ओ ता एक मरे हुए पशु दे समान है। क्योंकि दरगाह विच ता अगे करनी कीरत वाची है तेरे मन विच कितना को गुरु दा प्यार है कितना को सत्कार है अगे ता ए वाचिया जाना है। कोई चार अखर घट पढ़ लवे कोई वध पढ़ लवे पर अगे ए नहीं पुछा जाना भाई तू कितनी को पढ़ाई कीती है कितनी को माया कथी कीती है। अगे तो भाई करनी कीर्त वाची है की करनी कमाई कीती 24 घंटिया विचू कितना को समा तू परमेश्वर दी बंदगी विच मन करके बतीत कीता है। मामूली दुकानदार नू वेखिए सवेर तो शाम तक हिसाब ला लैंदा है अज की कमाया है की गवाया है। मनुख दे 24,000 स्वास बिना जपन तो रोज दे व्यर्थ जा रहे हन इसने कदी ख्याल नहीं कीता। ए चेता कराउंदे हन जपन वाले ए चेता कराउंदे हन महापुरख ते जिन्हां ने उन्हां दे बचना नू पले बन लिया फिर लोक सुखी पर लोक सुहेले। कबीर जी ने वेखिया एक सेठ बैठा है दुकान ते बड़े नौकर चाकर हुक्म दी उलीक विच खड़ोते हन। मन च सोचिया भाई इसनू कदी सत संगत विच नहीं वेखिया ते होवे ना ता इसनू बेनती करिए भाई सत संगत विच आया करो। कबीर जी जा खड़ोते ते फिर ए बड़े हंकार नाल कहन लगा नौकर नू भाई दियो कुछ ते तोरो इसनू क्योंकि हजूर कहंदे ना माया तारी अन्ना बोला गुर शब्द ना सुने बो रोल कचोला। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात आप तो उत्ते किसे नू समझदा ही नहीं। कबीर जी जा खड़ोते ए भिखारी समझ के अपने नौकरां नू कह रहा भाई कुछ इसनू दियो ते तोरो। कबीर जी कहन लगे सेठ जी मैं मंगता नहीं मैं कुछ मंगन लई नहीं आया। आख्या जे तू मंगता नहीं तां व्यापारी है। आख्या मैं व्यापारी भी नहीं जिस ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਆਖਿਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਸੇਠ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲੇ। ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਉਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤਨਖਾਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੜੀ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾ ਖੜੋਤੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਛੂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਡੰਗ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਵ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵੇਰਾਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ते फिर जा खड़ोते ते आवाज ओ सच दी आवाज कन्ना ते पाई आख्या सेठ जी सत संगत विच आया करो। हुण सेठ ने अपने नौकरां वल घूर के अखां लाल करके आख्या तुहाडे कोल इक्को बंदा नहीं मुड़दा, अज इस नूं ऐसी मार दिओ कि इत्थे आउण जोगा ही ना रहे। कबीर जी कले सन, सारे नौकर उन्हां नूं पै गए। लंग लुहान कर दिता। कबीर जी जदों उठन लगे ना ते कहन लगे होए सेठ तेरी तां उम्र ही थोड़ी रह गई है, क्योंकि जेड़े महापुरखां नूं गुरमुखां नूं भले पुरशां नूं सताउंदे हन ओ एवें समझ लैण जिवें अपन हथी अपनी जड़ आप ओ पट्टे। जेड़े जुलम करदे हन संतां महापुरखां भगतां दे उपर ओ कलंकी भी हो जांदे हन और नष्ट भी हो जांदे हन और फिर उन्हां दा नाम माड़ियां अखरां विच पुकारिया जांदा है। जिवें रोज तुसीं कहंदे हो हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, उन्हां दा नाम दुष्ट करके पुकारिया जांदा है जो भगतां नूं सताउंदे हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। कबीर जी आ गए। इधर सेठ समा अपना व्यर्थ गवा के गुजर गया। काफी समा बीतन दे बाद कबीर जी जा रहे हन सैर करते हुए ते की वेख्या एक बड़ा वड्डा कठ होया हुआ है। आख्या की है? किसे ने दस्या जी बैल बेहोश होके डिग पिया क्योंकि उदे उपर भार बहुत लद्या होया सी, इतना भार खिंच नहीं सकिया ते बेहोश होके डिग पिया। कबीर जी ने जदों जाके वेख्या अंतरदृष्टि दे नाल जदों जाके तकिया ते की वेखदे हन भई इह तां उसे ही शेठ दी रूह है जिन्हों बारंबार कहंदे रहे सी भई जपिया कर श्री वाहिगुरु। तां कबीर जी ने शब्द उचारण कीता, चार पाऊं दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा परे ही तब कत मूंड लकई है, हर बिन बैल बिराने होई है। ओ हरि दे सिमरन तो बिना बैल भी जूनी जी पैना सी ना। कबीर जी कोल सारा ही जितने लोग खड़े सी कबीर जी कोल आके चुरमुट पा लिया। कबीर जी ने सारी साखी सुनाई ते सारे लोगों ने बेनती कीती, कबीर जी हुण साडे ते कृपा करो, ए जूनिया ए दुख सानू ना भोगना पवे, कोई ऐसी जुगत दसो। ता कबीर जी आखरी तुकां विच दस रहे हन कि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। अखीर विच आप कहंदे हन कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत कर जाएगा। आप कहंदे हन भाई जिन्हां नूं सत संगत प्राप्त है वह संसार सागर तो तर जाणगे। आखिरी तुकां विच कबीर जी दस रहे हन।